0: राजधानी के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल इंडोर स्टेडियम से भारतीय खिलाड़ी के हर शॉट और प्रत्येक पॉइंट पर उठता ये शोर बनावटी नहीं बल्कि स्वाभाविक है। ये जोश और जुनून 17 साल के लंबे अंतराल के बाद BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप खुली आंखों से देखने का अवसर तो है, साथ ही उस बीते दौर से अब नए दौर के खिलाड़ियों और नई शैली के बैडमिंटन को निहारने का एक अवसर भी है। इन 17 सालों में भारतीय बैडमिंटन ने एक पीढ़ी को आगे बढ़ते, तिरंगे को थामते और देश का मान बढ़ाते हुए देखा है। वही पीढ़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप के मंच पर भारत के लिए कामयाबी की नई कहानी लिख रही है। पहले दिन की कामयाबी के सिलसिले को दूसरे दिन भी कुछ खिलाड़ियों ने आगे बढ़ाया है। ये शो साफ तौर पर ये बता रहा है कि 14वीं सीड लक्ष्य सेन ने राउंड ऑफ 64 में अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। ऑस्ट्रिया के कॉलिंस वैलेंटाइन फिलिमोन के खिलाफ पहला गेम 16-21 से गंवाने के बाद भारतीय खेल प्रेमियों के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, एक आशंका मन में बटरा रही थी, लेकिन लक्ष्य ने विरोधी को बस यही एक मौका दिया। दूसरे और तीसरे गेम में तो ऐसी रफ्तार पकड़ी कि फिलिमोन को पांव जमाने का मौका तक नहीं मिला। लक्ष्य 16-21, 21-8, 21-4 की जीत पर मुस्कुरा रहे थे तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। लक्ष्य ने अपने इस जीत को खास बताया।
1: थोड़ा विंड था स्टेडियम में एंड फर्स्ट मैच था, जो मेरा टैक्टिक्स था वो थोड़ा चल नहीं रहा था, एंड देन जो मेरे शॉट्स थे स्पेशली नेट से जो मैं खेल रहा था उसपे वो काफी शॉट जा रहे थे। आई वाज स्केर्ड कि वो बाहर चले जाएंगे, तो आई थिंक दैट वाज नॉट वर्किंग। एंड सेकंड सेट में आई ट्राइड टू ओपन अप द गेम, उसको रैलीज में मैं लेके आया, बट अगेन जब भी मैं ड्राइव खेल रहा था या फिर मैं शॉट उनको दे रहा था चांसेस एज ही स्टॉल एंड गॉट अ गुड रीच, तो वो अटैक करके पॉइंट ले ले रहे थे, बट आई थिंक सेकंड सेट में मैंने वही चीज चेंज करी। आई ट्राइड टू गेट हिम इनटू रैलीज एंड इतने चांसेस उनको नहीं दिए अटैक करने के, ड्राइव्स खेलने के। स्टार्टिंग से ही मैं काफी कॉन्फिडेंट था, बॉडी लैंग्वेज और जैसा मैं खेल रहा था आई थिंक दैट वाज आल्सो मच बेटर देन द फर्स्ट टू गेम।
0: महिला सिंगल्स में मात्र 18 साल की उन्नति हुड्डा ने म्यांमार की थेट हटर थुजार के खिलाफ राउंड ऑफ 64 के मैच में पूरी परिपक्वता का परिचय दिया। पहले गेम में उन्नति को मुश्किलें आ रही थी, उन्होंने माना कि शटल को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जल्दी ही तालमेल बिठाया और फिर गेम को बेहद नजदीकी मुकाबले में 22-20 से जीत लिया।
2: In the first set, I was just trying to understand the drift and everything, but she was also playing, she was very good and all. It was going neck to neck. I think in the last 5 points of the first game, I controlled and stayed patient and then she did some mistakes.
0: पहले गेम में उन्नति ने आसानी से अंक दिए थे, लेकिन दूसरे गेम में अपनी गलतियों को सुधार कर कोर्ट पर उतरी। उन्नति ने बताया कि उन्होंने नेट गेम और रणनीति को बदला और फिर दूसरा गेम 21-16 से जीत कर मैच जीतने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई।
2: And then the second game, I was able to know ki that end of the court, the attack is going faster, so I just played my game attacking and it helped me and stick to the plan. Her attack also was going really fast, so there was some difficulty for me also. In the first game, maine thode net se front court se thode errors kiye the, and then I was ready in the net front court. I gave so many points from the front court, so then I became ready on the front court and it helped me.
0: Haryana ke Rohtak ki ye khiladi is mukam tak pahunchne mein apne pita ke yogdan ko bahut bada manti hain.
2: There is a massive contribution of my family and my dad. So I cannot say in words that how much he has contributed to me. But yeah, I am really thankful that I have a great family who supports me a lot.
0: Women's doubles में त्रिशा जॉली और गायत्री पुलेला ने बड़ा उलटफेर कर दिया। Unseeded भारतीय जोड़ी ने 16वीं सीड अमेरिका की एलिसन कुन ली

0: और लॉरेन लैम को दिन में ही तारे दिखा दिए। पहला गेम 21-15 से जीतने वाली गायत्री और त्रिशा ने दूसरे गेम को अपने लिए और भी आसान बना लिया। दूसरा गेम दोनों ने 21-12 से जीता और प्री क्वार्टर फाइनल में जोरदार दस्तक दी। इस जीत पर पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था और त्रिशा और गायत्री के चेहरे पर इसकी खुशी साफ दिख रही थी।
1: फील्स अमेजिंग, आई एम सुपर ग्रेटफुल, आई जस्ट फील वेरी प्राउड, बहुत खुश है। द कोच वर लाइक वेरी मच लाइक यस्टरडे, अ बिट ट्रिकी, बट आई थिंक वी जस्ट वांटेड टू अडैप्ट क्विकली एंड नॉट गेट टू फ्रस्ट्रेटेड, बट एज सून एज वी to know how the shuttle was moving, I think we could play our game better, and yeah, I think we were pretty aggressive today, which worked in our favor, so yeah, really happy.
0: विमेंस डबल्स में ही कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी को 9वीं सीड गैब्रिला स्टोवा और स्टेफानी स्टोवा ने आसानी से 7-21, 14-21 से शिकस्त दी। भारतीय जोड़ी ने माना कि पहले गेम में हड़बड़ी में गड़बड़ी हुई और लंबी रैली में विरोधी भारी पड़ी। दोनों ने ये भी माना कि फिटनेस पर काम करना होगा।
2: फर्स्ट गेम हम खेल रहे थे एंड रैलीज हो रही थी बहुत ज्यादा, बट हम पॉइंट नहीं कन्वर्ट कर पा रहे थे एंड हम लोग उनसे टफ फाइट भी दे रहे थे रैलीज में, बट वही हो रहा था कि एंड में पॉइंट उनको आ रहा था और फिर वो काफी लीड चली गई थी। हम लाइक इतना पेशेंट नहीं खेल रहे थे, हम थोड़ा हड़बड़ी कर रहे थे पॉइंट लेने में। वेरिएशंस करने चाहिए थे, लाइक वो हमसे थोड़े ओल्डर है, स्ट्रॉन्गर है, उनका स्मैश बहुत जोर से आ रहा था जितना हम कंपैरेटिवली मार रहे थे। वी आर गोइंग टू ट्रेन वेरी हार्ड, एकदम रिग्रेस ट्रेनिंग करना है, फिट होना है, कंसिस्टेंट होना है कि इतना तो रैलीज होगा, इतने स्ट्रॉन्ग रहेंगे कि इजी पॉइंट नहीं मिलने वाला है। तो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन अटैक और डिफेंस, दोनों में से एक चीज एकदम स्ट्रॉन्ग करना है।
0: उधर मिक्स डबल्स में अशित सूर्या और अमृता प्रमुथेश की जोड़ी ने तुर्की के इमरे सोनमेज और यासिमेन बेगताज के खिलाफ मैराथन मुकाबला किया, लेकिन तमाम जोर लगाने के बाद भी राउंड ऑफ 64 में शिकस्त झेलनी पड़ी।
3: जस्ट फीलिंग सैड फॉर दैट, फॉर अस, फॉर द फैंस, फॉर द क्राउड, वी कुडंट कन्वर्ट द गेम, जस्ट फीलिंग बैड अबाउट इट।
0: पहले गेम को भारतीय जोड़ी ने 21-16 से जीता, लेकिन ये लय बरकरार नहीं रह सकी। दूसरे गेम में कांटे का मुकाबला हुआ, दोनों में से कोई भी जोड़ी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। एक एक अंक के लिए कांटे का संघर्ष दिखा। इस गेम के रोमांच का अंदाजा स्कोर से लगाया जा सकता है। इस मैराथन गेम को तुर्की की जोड़ी ने 30-29 के स्कोर पर जीता। मैच तीसरे गेम तक पहुंचा। इस गेम में शुरुआती बढ़त भारतीय जोड़ी ने बनाई, लेकिन एक बार फिर लय बिगड़ी और कड़े संघर्ष के बाद 24-22 से शिकस्त मिली। तीन गेम का ये मुकाबला रोमांच की हदों को पार कर गया। परिणाम को लेकर सूर्या और प्रमुथेश ने कहा,
3: पहला सेट में तो अच्छा खेल रहे थे, जीत भी गए पहला सेट। सेकंड सेट वही कॉन्फिडेंस में गए और मैच पॉइंट भी थे, थोड़ा प्रेशर हो गया, कन्वर्ट नहीं कर पाया। वी वर प्लानिंग फॉर ईच पॉइंट दैट व्हाटएवर वी प्लान्ड डिडंट गो आवर वे, सो वी एंडेड अप डूइंग लिटिल एरर्स।
4: आई मीन वी आर हैप्पी दैट वी हैव प्लेड दिस वेल, बट देयर आर सम टेक बैक्स वी विल फोकस ऑन, लाइक when we have the match point we had to play safe, just inside, just focus on few easy points, not anything extra or trying to take a quick point, just those small take backs.
0: इससे पहले मिक्स डबल्स में ही रोहन कपूर और रितिका शिवानी गड्डे की जोड़ी भी कड़े संघर्ष के बाद कनाडा के जोनाथन बिंगसान लाई और क्रिस्टल लाई से 22-20, 19-21, 17-21 से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इस हार की निराशा भारतीय जोड़ी की बातों से महसूस की जा सकती है।
3: फर्स्ट गेम ठीक था, कंफर्टेबली जीत रहे थे, सेकंड गेम भी ठीक चल रहा था, थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी इधर उधर मिस हो गया एंड देन वी लॉस्ट अ बिट ऑफ टच, ट्राई टू प्ले अ लॉट ऑफ क्लोज पॉइंट्स एंड वहां पे वी स्लिप्ड आउट एंड एज अ रिजल्ट वी लॉस्ट द सेकंड गेम एंड देन ऑब्वियसली होम क्राउड है, हमारा स्टेडियम है, हमारा शहर है, थोड़ा प्रेशर आ गया स्टार्टिंग में दोनों को एंड देन ऑब्वियसली डिडंट स्टार्ट वेल एज अ रिजल्ट।
0: ये तो रही भारतीय खिलाड़ियों की बात, लेकिन टूर्नामेंट में दूसरे दिन बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं हुआ। मेन सिंगल्स में दुनिया की तीसरी रैंकिंग वाले जोनाथन क्रिस्टी ने पहले दौर में जर्मनी के मैथियास किकलिट्स को 2 गेम में आसानी से शिकस्त दी। इसी वर्ग में 13वीं सीड सिंगापुर के लोकिन येव ने पहले राउंड का मैच कनाडा के ब्रायन यंग से आसानी से जीता। महिला सिंगल्स में 11वीं सीड जापान की नोजुमी ओकुहारा को पहले दौर में ही कोर्ट पर खूब पसीना बहाना पड़ा। तुर्की की ओसगे बैराक ने उन्हें मैदान पर खूब भगाया। हालांकि ओकुहारा 3 गेम का ये मुकाबला जीतने में सफल रही। पसीना तो 4थी सीड चीन की चेन यू फेई को भी खूब बहाना पड़ा। जीत के लिए हांगकांग की लोसिनियान हैप्पी ने उन्हें 3 सेट तक इंतजार कराया। अब तीसरे दिन मेन सिंगल्स में पहले राउंड में वर्ल्ड नंबर 1 शी यू की को हराने वाले आयुष शेट्टी का सामना अपेक्षाकृत कमजोर प्रतिद्वंदी श्रीलंका के दुमिंदु अबे विक्रमा से होगा। लक्सेन राउंड ऑफ 32 में अमेरिका के गैरेट टैन से भिड़ेंगे। वीमेन्स सिंगल्स में भारत के पदक की सबसे बड़ी उम्मीद और 9वीं सीड पीवी सिंधु कनाडा की वेन यू झेंग से खेलेंगी। 49वीं सीड कैनेडियन खिलाड़ी वेन यू झेंग के खिलाफ सिंधु का पलड़ा काफी भारी माना जा रहा है। उन्नति हुडा के लिए कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिचेल ली के साथ मुकाबला कठिन हो सकता है, लेकिन उन्नति ने लय बरकरार रखी तो उलटफेर संभव है। मेंस डबल्स में 5वीं सीड सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भिड़ंत स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर डून और एडम प्रिंगल से होगी। हरिहरन अमसा करुणन और एमआर अर्जुन का सामना 15वीं सीड कोरिया के कैंग मिन युक और की डांग जू से होगा।

मिक्स डबल्स में 15वीं सीट ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मकाओ की जोड़ी लियांग लॉक चोंग और वेंग ची एनजी से खेलेंगे। उम्मीद है भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। प्रोड्यूसर शहनवाज खान और एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से शाहिद आजमी की रिपोर्ट के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश।

0: डंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: उमंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती, समय भी किसी का इंतजार नहीं करता, जो हर पल का सम्मान करता है भाग्य

0: भी उसी का साथ देता है। समय बहुत अनमोल है, उसकी कद्र करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर संदेश के लिए, जिसने सच में हम सबको समय का महत्व समझाया। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता के साथ साथ डिंपल देवांगन।
0: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
0: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी।
0: सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से।
1: श्रोताओं एक बार फिर से करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: जी
1: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी कुछ ऐसे शब्दों की जो हैं तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू के, लेकिन अब वे विश्व की कई भाषाओं में विशेषकर अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं।
0: आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कुछ और शब्दों को जो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, लेकिन अब दुनिया भर में प्रयोग में लाए जाते हैं। श्रोताओं, आपने बंगलो यानी बंगला शब्द अवश्य सुना होगा। शायद ही कोई सोचे कि ये शब्द भारतीय है। अक्सर ऐसा लगता है कि ये शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन तथ्य कुछ और है।
1: जी श्रोताओं, तथ्य ये है कि अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगला या बांग्ला से निकला है।
0: जी।
1: इसका अर्थ था बंगाल शैली का मकान। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में जब देखा कि भारत के बंगाल क्षेत्र में एक मंजिला चौड़े बरामदे वाले घर गर्मी के मौसम के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं,
0: जी,
1: तो उन्होंने भी अपने रहने के लिए इसी प्रकार के मकान बनवाए और उन मकानों को उन्होंने बंगलो कहना शुरू किया। धीरे धीरे ये शब्द पूरे ब्रिटिश साम्राज्य और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो श्रोताओं, जानकारी ये थी कि बंगला शब्द बांग्ला शब्द से निकला है।
0: जी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अनेक देशों में आज भी जहाँ जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव रहा, एक मंजिला स्वतंत्र मकान को बंगलो ही कहा जाता है।
1: आशा है श्रोताओं कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर बड़ी रोचक लग रही होगी, है ना? आइए अब सुनते हैं एक और नया शब्द और वो शब्द है खाकी। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस और सेना की वर्दी का प्रसिद्ध रंग खाकी कहाँ से आया?
0: तो हम आपको बता देते हैं, ये शब्द फारसी उर्दू के खाक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धूल, मिट्टी या राख। तो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में खाकी शब्द कहाँ से आया।
1: होता ये था कि भारत में अंग्रेज सैनिकों की सफेद वर्दी बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी।
0: जी,
1: इसीलिए उन्होंने धूल जैसे भूरे रंग की वर्दी पहननी शुरू की। ये रंग इतना उपयोगी सिद्ध हुआ कि बाद में पूरी ब्रिटिश सेना और फिर अनेक देशों की सेनाओं तथा पुलिस ने भी इसे अपना लिया।
0: जी,
1: इसलिए आज खाकी केवल एक रंग ही नहीं बल्कि अनुशासन और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है।
0: और अब बात करते हैं एक और बहुत प्रचलित शब्द की। शब्द है लूट। अंग्रेजी का लूट शब्द भी भारत से गया है। ये शब्द हिंदी के लूट या संस्कृत के लुंट शब्द से संबंधित है। इसका अर्थ है छीन लेना या लूट लेना।
1: श्रोताओं, अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज लोग अधिकतर जज, सैनिक या प्रशासनिक अधिकारी होते थे।
0: जी।
1: न्याय करने की प्रक्रिया में या प्रशासनिक मसलों में अंग्रेज अक्सर ये शब्द भारतीयों द्वारा सुनते थे।
0: जी।
1: उन्होंने इस शब्द को यानी लूट शब्द को अपनी भाषा में अपना लिया।
0: जी।
1: आज अंग्रेजी समाचारों, फिल्मों और पुस्तकों में लूट शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में होता है।
0: और अब लेते हैं दो और शब्द जिनसे सभी परिचित हैं। वो शब्द हैं योग और गुरु। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां योग शब्द न सुना हो। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना।
1: श्रोताओं, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की जीवन पद्धति है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जिसके बाद ये शब्द पूरी दुनिया में और अधिक लोकप्रिय हो गया। इसी प्रकार से गुरु शब्द भी संस्कृत से आया है।
0: आज भारतीय अंग्रेजी में ये प्रचलन हो चला है कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी गुरु,
1: मार्केटिंग गुरु
0: या म्यूजिक गुरु।
1: श्रोताओं, दूसरी भाषाओं में शब्दों का यह स्थानांतरण भारत की ज्ञान परंपरा का विश्व पर गहरा प्रभाव दर्शाता है।
0: जी, तो प्रिय श्रोताओं, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती बल्कि संस्कृति की वाहक भी होती है। जब किसी देश के शब्द दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचते हैं तो वे अपने साथ उस देश का इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन भी लेकर जाते हैं। जिस भाषा के शब्द दुनिया अपनाने लगे, समझिए उस संस्कृति ने दुनिया को कुछ अमूल्य दिया है।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की

0: जानकारी। तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए। हमारा आज का प्रश्न है, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है।
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
0: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: जी
0: श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, नदी का सफर।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए उसके उद्गम, प्रवाहित होने के क्षेत्रों, जलप्रपात बनने और अंततः समुद्र में मिल जाने के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है।
2: नमस्कार साथियों, कल कल करती नदियाँ धरती की नसों में बहता हुआ जीवन है जो हर प्राणी को जीवन दान देती हैं।
3: नदियाँ प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं, जिनकी गोद में न जाने कितनी मानव सभ्यताएं पनपी, फूली फली और विकसित हुई। नदियाँ न केवल जल का स्रोत हैं, बल्कि जीवन, संस्कृति और सभ्यताओं की आधारशिला है। अक्सर एक जिज्ञासा हमारे मन में उठती है कि नदियों का उद्भव कैसे हुआ, तो आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी, नदी का सफर।
2: एक समय था जब पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ये लगभग 20 लाख वर्ष पहले की बात है। इस काल को हिमयुग यानी आइस एज कहते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी थी और पेड़ पौधे भी उगने लगे थे।
3: इस तरह से हजारों वर्ष बीत गए। हिमालय पर्वत पर कहीं एक बर्फ की चोटी थी और वहीं रहती थी एक चंचल और चमकदार बर्फ की बेटी, नाम था हिमशिला। वो बहुत बड़े ग्लेशियर यानी हिमनद में रहती थी।
2: एक दिन सूरज ने मुस्कुरा कर कहा,
4: पुत्री हिमशिला, अब तुम्हें धरती पर उतरना होगा। वहां नीचे बहुत से जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें तुम्हारे जल की आवश्यकता है।
5: क्यों, मैं क्यों नीचे जाऊं? मैं तो यहाँ ऊपर बहुत खुश हूँ। बादल मेरे साथ आंख में चौली खेलते हैं। यहाँ सब कुछ कितना शांत है, मैं नीचे क्यों जाऊं?
4: पुत्री, ऊपर रहोगी तो केवल ठंडी बर्फ बनकर यहीं पड़ी रह जाओगी। हमें यूं ही पड़े नहीं रहना चाहिए, किसी के काम भी तो आना चाहिए।
5: अच्छा,
2: वो सोच में पड़ गई। फिर सूरज ने अपना ताप और बढ़ाया। फिर धीरे धीरे हिमशिला ने मन बना ही लिया पर्वत से उतरकर नीचे जाने का। वो एक छोटी सी धार बन गई और बहने लगी तीव्र गति से ढलान की ओर।
3: रास्ते में कई भूमिगत जलधाराओं ने भी यात्रा में उसका साथ दिया। उसकी गति और बढ़ गई। अचानक उसने महसूस किया, कोई उसे खींच रहा है। वो डर गई और बोली,
5: अरे ये कौन मुझे नीचे खींच रहा है?

0: पर्वत पर तपस्या करने वाले एक बूढ़े साधु ने हंसकर कहा,
1: पुत्री, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। डरो नहीं, धरती माँ तुम्हें अपने पास नीचे बुला रही है ताकि उसे जीवन मिल सके।
2: वो खुशी खुशी बहने लगी।
3: देखो देखो देखो देखो, जरा देखो, अरे ये क्या, और भी इतनी सारी छोटी छोटी धाराएं बहती हुई आ रही हैं मेरी तरफ। हाँ देखो ना, मेरी तरफ।
2: ये सभी आपस में मिल गईं और सभी मिलकर बहने लगी। अब उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया था। कहने लगी,
0: सखी, अब हम सब मिलकर बहेंगी, हम सब एक दूसरे की सहायक हैं।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब मिलकर बहेंगी।
0: हाँ।
2: अब मिलकर बहने के कारण उनकी बहने की ऊर्जा और बढ़ गई। फिर क्या था, छोटी सी जलधारा ने अब एक विशाल नदी का रूप धारण कर लिया। मार्ग में कई पत्थर मिले, चट्टाने मिली, मार्ग रोकने की भी कोशिश की, लेकिन नदी को तो अब बस एक ही धुन थी,
3: मुझे तो बस आगे बढ़ना है, आगे और आगे।
2: एक दिन की बात है, बहते बहते नदी एक बहुत ऊंची चट्टान के पास आ गई। नीचे देखा तो बहुत गहराई थी, उसे बहुत डर लगा। क्षण भर के लिए वो रुक गई और सोचने लगी,
3: हाँ अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं।
2: उसने दाएं बाएं देखा, तब पर्वत ने कहा,
1: कूद जाओ ना।
3: कूद जाऊं?
1: डरो मत।
3: हाँ?
1: धरती माता तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगी।
3: अच्छा, तो कूद जाती हूँ। कूद गई।
2: लोगों को खुश देखकर नदी को बड़ी खुशी हो रही थी। और हाँ, एक बात और है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो रुकी नहीं, अपने लक्ष्य की ओर बहना जारी रखा। कई बार रास्ते में या पहाड़ों पर वर्षा हुई तो उसका जल प्रवाह और भी बढ़ गया।
0: फिर क्या था, भला भूमिगत झरने भी क्यों चुप रहते, उन्होंने भी पूरा योगदान दिया और वो भी शामिल हो गए नदी की इस रोमांचक यात्रा में।
2: वो आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसने कई गांव देखे जहां लोग और पशु पक्षी प्यासे थे। पेड़ पौधे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे खेत सूख गए थे। नदी बोल उठी,
3: अब समझी, सूरज दादा ठीक ही कहते थे, मेरा बहना दूसरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां जहां मैं जाती हूँ वहां हरी हरी घास उगाती है, पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, लोग मुझे माता कहते हैं, मेरी पूजा करते हैं। न जाने कितनी सभ्यताओं को मैंने अपनी गोद में फलते फूलते

0: बनपती देखा है, लेकिन कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मुझ में कूड़ा फेंकते हैं। शहरों की प्रदूषित नालियां तक मुझ में बहा देते हैं और मैं बीमार हो जाती हूँ।
1: जब वो सागर तक पहुंची तो सागर ने कहा,
2: पुत्री तू इतनी दूर कैसे आ गई?
0: माँ धरती का गुरुत्वाकर्षण मुझे यहाँ तक बहा कर ले आया।
2: पुत्री तू बहती रही, इसीलिए जीवन चलता रहा।
0: अच्छा,
2: तू रुकती तो हा? जीवन चक्र ही रुक जाता। चलती रहो।
0: मैं चलती रहूंगी। हाँ, मैं हमेशा चलती रहूंगी।
1: चरैवेति, यही तो जीवन है।
3: चरैवेति, नदियों का संदेश यही महान। चलते रहना कर्तव्य पथ पर, हो यही बस तुम्हारे जीवन की पहचान।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम नदी का सफर। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विनीत कुमार शर्मा, कलाकार पूनम एस कुदुसिया, सुनील लोहिया, शशांक शर्मा और बबीता त्रिपाठी, आलेख अजीत होरो, संपादन एवं निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है हेलेन केलर।
2: इस कार्यक्रम में दिव्यांग अमेरिकी महिला हेलेन केलर के जीवन और दिव्यांगता से उनके संघर्ष और विजय की गाथा का सप्रसंग उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार वे विश्व की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं।

0: आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलन केलर।
1: हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और
2: डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
3: मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी। हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए।
0: हेलन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था

0: मिस सेलिवन।
1: आओ हेलेन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूँ सेलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे। दोस्त हूँ ना तुम्हारी। शाबाश।
2: इस तरह एनी सेलिवन ने हेलेन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलेन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलेन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा।
1: हेलेन, आओ, आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलेन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ हाथ दो। गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया।
0: अचानक एक दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सेलिवन के मन में एक विचार आया।
1: अरे, ये पानी का नल? हाँ, अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलेन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलेन, हेलेन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे। हाँ, अच्छा, अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो, मैं लिख रही हूँ पानी। हाँ हाँ, शाबाश। पानी। नी, हाँ, पा नी,
3: नी।
1: एक बार फिर कोशिश करो।
3: पा,
1: हाँ,
3: नी।
2: यूं शुरू हुआ हेलेन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी।
0: जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई, यहाँ तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी।
1: मिसेस केलर
4: जी,
1: हेलेन तो अब बहुत कुछ सीख गई है। संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं। आज हेलेन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना।
4: जरूर, मैं अभी बजाती हूँ।

0: सिर्फ इतना ही नहीं, हेलेन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई।
1: यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेड क्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलेन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है।
0: बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गईं।
1: उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आई। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया।
0: ।1964 में हेलेन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया।

0: हेलन केलर की सफलता का रहस्य था तमाम कठिनाइयों के बीच आनंद की तलाश। हेलन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थी, है और हमेशा रहेंगी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम हेलन केलर, और श्रोताओं इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार, नमस्कार। उमंग, उमंग, उमंग।

0: This is Akashwani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे. उद्यन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य आर्थिक समाचारों पर.
0: So benchmark domestic indices decline, Sensex falls over 300 points, Nifty settles below 24,100. Any attempt to manipulate the newly introduced closing auction session will be dealt with sternly, says SEBI's chairman Tohin Kanta Pandey. In global crude oil prices rise as tensions in West Asia intensify.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख. सेंसेक्स में 300 से अधिक अंकों की सुस्ती और निफ्टी 24,100 अंक से नीचे आया. सेबी के अध्यक्ष तोहिन कांत पांडे ने कहा, हाल ही में शुरू किए गए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में किसी भी तरह की हेराफेरी से सख्ती से निपटा जाएगा और पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल.
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़ककर 76,910 पर पहुंच गया. निफ्टी

0: 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। नेस्लो स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप सूचकांक में आज 0.2% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 0.5% नीचे आ गया। लगातार आज चौथा सत्र था जब सेंसेक्स में गिरावट देखी गई। वहीं निफ्टी 7वें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। पश्चिम एशिया में कूटनीतिक समाधान की उम्मीदें कम होने से निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ, जिसके कारण बाजार लाल निशान के साथ बंद हुआ। इससे पहले कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच बाजार की शुरुआत बहुत सुस्त रही और पूरे सत्र के दौरान दोनों मुख्य सूचकांक दबाव में रहे और बाजार में चौथरपा बिकवाली देखी गई।
1: The benchmark domestic equity indices ended in the negative territory today. The Sensex declined 326 points or 0.42% to close at 76,910. The Nifty lost 77 points or 0.32% to settle at 24,078. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index dipped 0.2%, while the small-cap 100 index fell 0.5%. The Sensex extended its losing streak for the fourth consecutive session, while the Nifty closed lower for the seventh straight day as fading hopes of a diplomatic breakthrough in West Asia weighed on investor sentiment. Earlier, the markets opened on a subdued note amid weak global cues. Both the benchmark indices remained under pressure throughout the session, with broad-based selling observed across the markets.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 21 के शेयरों में आज गिरावट दर्ज हुई। सबसे ज्यादा नुकसान वाली कंपनियों में पावर ग्रिड 2%, बजाज फाइनेंस और लार्सन एंड टूब्रो 1.3% और आईटीसी में 1.2% की सुस्ती आई। वहीं दूसरी तरफ एचसीएल टेक में 1.7%, एटर्नल में 1.3% और कोटक महिंद्रा बैंक में 1.2% का उछाल देखा गया।
1: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 24 out of 28 sectors edged downwards. Among the top underperformers, power decreased 1.7%, capital goods slipped 1.6%, and utilities lost 1.3%. In contrast, housing finance advanced 0.6%, focused IT as well as IT rose 0.3%, and mid-small private banks eked out a marginal gain. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,483 companies declined, 1,807 advanced, and 231 remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ। उद्यन, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: आज लगातार चौथा सत्र हमने देखा जब सेंसेक्स में गिरावट आई, वहीं निफ्टी भी कारोबारी 7वें दिन गिरावट के साथ लगातार बंद हुआ। क्या कारण है जो मार्केट संभल नहीं पा रहा है और क्या लगता है कि इस सप्ताह में हमें कैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं?
2: देखिए, जैसे कि कई महीनों से मार्केट का जो मूड है वो मध्य पूर्व में जो संघर्ष चल रहा है और उससे जो तेल की आपूर्ति के ऊपर जो असर पड़ रहा है, जो लग रहा है उसके उन कच्चे तेलों का जो दाम, उससे जो इंडिकेशन लिया जा रहा है, संकेत लिए जा रहे हैं, उससे वो डिपेंड कर रहा है, मतलब वही इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्रभावित कर रहा है मार्केट मूवमेंट्स को। और अगर आप देखें पूरा साल जो है ना, अगर आप निफ्टी को 50 को देखें तो वो आपके ये तकरीबन 24,500 पॉइंट की रेंज में वो घूम रहा है। वो जब मूड अच्छा होता है, संघर्ष के बारे में खबर तो रिलीफ मिली तो वो 500 के आसपास, 24,500 के पास, और जब ऐसी खबरें आती हैं जहाँ पे जैसे वो MOU हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में, वो उसका उसकी मियाद पूरी हो गई, फिर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो प्लस वैश्विक बॉन्ड मार्केट्स में एक ये कहें कि अमेरिकी बॉन्ड मार्केट्स में जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वो उसका एक इफेक्ट वहाँ पे जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है, ज़बरदस्त डाउनटर्न हुआ, उसका इफेक्ट इक्विटी मार्केट में भी हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें कई बार रीइन्फोर्स कर जाती हैं और उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। बाकी क्या कच्चे तेल के दामों से हमारे आर्थिक जो तंत्र है, सिस्टम है, उसको उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हम ज़्यादातर ओवरवेलमिंग अमाउंट तो हम लोग आयात ही करते हैं, तो जब भी ऐसी खबर आएगी आप सबसे पहले आप देखेंगे करेंसी, जो कि हमारा भारतीय रुपया है डॉलर के वनस्पत, उसके ऊपर दबाव पहले, उसके बाद ऑलमोस्ट इमीडिएटली इक्विटी।

0: So the fact it is actually the other way of looking at it, that it is reflecting resilience. Now that doesn't help. It's a high risk investment, and these are what the vagaries are. So therefore, another lesson is that you obviously people talk about asset allocation, that you need to be in equities, gold, and debt. That mix is
1: Diversification,
0: yeah.
1: yeah.
0: You're getting back to the textbook, and how do you do it in for a retail investor? People like you and me, you can look at multi-asset allocation funds. And if you look at how they've been doing it every time period, 6 months, one year, 3 years, 2 years, you'll find them doing much better than even index funds.
1: You're right.
0: So those things are coming back, and they are actually showing. And typically, and during these periods, you get to know also which in fund manager, which fund house, which scheme does well. So it's not about how you do well when the markets are doing well. It's also when the market downturn happens, men and the boys get separated.
1: All right. Very interesting point you make, Udayan, of the domestic investors. But let's talk of the foreign portfolio investors and the foreign institutional investors. After a long, long time, let's say after almost 6 months or even 8 months now, there have been a positive inflow from the FPIs and FIIs. And that is quite positive, of course, not manifesting into what we are seeing in the Indian markets. But as well, if we see the primary market as well, not getting quite buoyed up, rather being very tepid, you're saying.
0: It's not such a bad thing, Nishit, because there have been these complaints that, you bring an IPO and it's exorbitantly priced. You need to keep something in the on the table for the smaller investors or the other investors, that these episodes are of founders and other large investors who had invested in initially of making money. That's a fair game. But in these kind of circumstances, maybe one good thing is IPOs is happening. If things were bad, IPOs wouldn't have happened. So again, I'm coming back to the resilience. If market people were not feeling excited about it, they wouldn't have come with the IPO. They would have postponed it. So those periods we have also seen. So that one thing is that it's looking okay. These people are coming in, but the pricing, I would argue, is likely to be much better. You won't find analysts complaining that it's unfairly priced or whatever, and those things are going to happen, and you'll also get key have a pipeline of these things, these kind of companies coming in.
2: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सीबी ने कहा है कि हाल ही में शुरू किए गए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन सीएएस में किसी भी तरह की हेराफेरी और इसे बदनाम करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुंबई में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की के एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. श्री पांडे ने कहा कि पहले इस्तेमाल की जाने वाली वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वीडब्ल्यूएपी व्यवस्था की तुलना में क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के तहत संभावित हेरफेर का पता लगाना सेबी के लिए अधिक आसान है. उन्होंने कहा कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में बाजार सहभागियों, खासकर म्यूचुअल फंड और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स की भागीदारी लगातार बढ़ रही है. सेबी ने बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने और हेरफेर की संभावनाओं को रोकने के उद्देश्य से 3 अगस्त को क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की शुरुआत की थी. इस व्यवस्था के तहत कारोबार समाप्त होने के समय के आसपास एक निर्धारित अवधि में खरीद और बिक्री के आदेश लिए जाते हैं और उन्हें नीलामी प्रक्रिया के जरिए उनका मिलान किया जाता है. श्री पांडे ने यह भी कहा कि अब तक सीएएस में सेबी को किसी भी तरह की हेरा फेरी के संकेत नहीं मिले हैं. उन्होंने इस नई व्यवस्था को बाजार के लिए एक बड़ा सुधार बताते हुए कहा कि इसे आगे भी जारी रखा जाएगा. उदयन, एक नई शुरुआत जिस तरह से सेबी के माध्यम से की जा रही है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में या अभी की हम बात करें तो इसके क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं?
0: देखिए, बिल्कुल अलाइन कर रहे हैं. जो विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, दूसरे एक्सचेंज है, उनमें भी इस टाइप के प्रोसेसेस हैं, इस टाइप का सिस्टम है, तंत्र है, तो उनके साथ आप अलाइन कर रहे हैं. तो कोई कोई फंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, कोई लार्ज इन्वेस्टर है जो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उनको बेसिकली जब आप विश्व के साथ, तंत्र के साथ जोड़ रहे हैं, तो आपके सिस्टम्स हारमोनियस होना पड़ता है. चाहे आप टैक्सेशन करें, चाहे आप एनी मनी लॉन्ड्रिंग के से जुड़े हुए जो रेगुलेशन है वो करें, या स्टॉक मार्केट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, वो अलाइन करें. और थ्रू आउट हमारे देश में हम लोगों ने कोशिश की है कि हम जुड़े रहें, कि जैसे दूसरी जगह में होता है,

0: देशों में होता है, दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस में होता है, वो जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करें, ये उन लाइन में है। जो इससे टीदिंग प्रॉब्लम, जैसे बच्चों के दांत जब निकलते हैं तब उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो ये वो वाले टीदिंग प्रॉब्लम्स है। पार्टिसिपेशन का इश्यू है, जब जैसे वैसे भागीदारी या पार्टिसिपेशन बढ़ेगी आप पाएंगे कि वो नॉर्मलाइज हो रहा है। एंड ये कोई भी एक्सपर्ट होगा, कोई भी जो इसको देख इस पे नज़र दौड़ाता है, वो यही कहेगा कि ये ज़्यादा, हम चेयरमैन सेबी से एग्री करना पड़ेगा कि ये
1: जी
0: ज़्यादा पारदर्शिता वाली सिस्टम है, क्योंकि वो आप उस सेशन में प्राइस डिस्कवरी हो रही है वनस्पति इसकी की एवरेज निकाला जाए, वो पूरा सेशन प्राइस डिस्कवरी के लिए है जो आखिर में हो रहा है। तो वो उससे जो आपके पैसिव फंड्स हैं, ETFs वगैरह हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, उनके लिए क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो जितना बेहतर करेंगे उतना उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बेहतर होगा। तो
1: जी
0: उससे आप जो आप और हम जैसे निवेशक हैं, वो जिसे ट्रैकिंग एरर बोलते हैं कि इंडेक्स से कितने दूर रहे, इंडेक्स तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो ट्रैकिंग एरर जैसी चीज़ों में वो भी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिर्फ ये FNO और दूसरे डेरिवेटिव्स प्लेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप और हम जैसे निवेशकों के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
1: उदयन, क्या ये इकोनॉमिक वैल्यूज को स्टेबिलिटी देने की भी एक कोशिश है, जिस तरह से RBI कर रहा है, खासतौर पे उस मामले में जहां पर हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं?
0: नहीं, ये विश्व के जो सिस्टम्स हैं, जैसे हम फैटका जो मनी लॉन्ड्रिंग के, आप देखते होंगे बैंक्स में आप फॉर्म भरना पड़ता है
1: जी
0: फैटका, वो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, दूसरे जो चीज़ें हैं वो हम एक हर जगह में, हम ग्लोबल सिस्टम सब सरकारों में उनके जो तंत्र हैं उनमें, ताकि एक पारदर्शिता रहे, सिस्टम सिमिलर रहे, क्योंकि आप एक देश से दूसरे देश जाएंगे उसका एक अलग सिस्टम करेंगे तो आपके लिए खर्चा बढ़ जाता है, तो ये हार्मोनाइज करने की वाली
1: जी
0: बात है।
1: आगे बढ़ते हैं। सरकार ने घरेलू PNG कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि पाइप से मिलने वाली प्राकृतिक गैस की ये योजना 1 सितंबर से लागू होगी। इस पहल का उद्देश्य देश भर में घरों तक साफ, सुरक्षित और पाइप वाली सस्ती कुकिंग गैस पहुंचाना है। अभी देश भर में 1,74,00,000 घरेलू PNG कनेक्शन है। मंत्रालय ने कहा कि पाइप वाली नेचुरल गैस घरों के लिए LPG सिलेंडर और खाना पकाने के पारंपरिक ईंधन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित, साफ तथा सुविधाजनक विकल्प है। और अब एशियाई बाजारों की बात करें तो आज दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 5.8% का नुकसान देखा गया। जापान का निक्केई 225 3.2% नीचे आ गया। उदयन, आज दक्षिण कोरिया के बाजार में काफी गिरावट देखी गई, इसे आप किस तरह से देखते हैं?
0: देखिए, वहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ कुछ गिने चुने स्टॉक्स की वजह से काफ़ी हलचल मची हुई है। कुछ एक फंड्स हैं जो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक जैसे हाइनिक्स, SK हाइनिक्स, उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने फंड्स को, उस पर्टिकुलर फंड को, ETF को स्ट्रक्चर किया, तो वो वहाँ का उतार चढ़ाव के कारण भी कुछ और हैं और असर भी कुछ और हैं। और ये जब AI रिलेटेड बुलिशनेस चल रही थी तो तब उस वो इस तरह एक हाई टाइड की तरह कि वो उन सारे बोट्स को ऊपर लेके जा रही थी। अब जब जैसे ही वहाँ पे पेसिमिज्म आ जाएगा थोड़ा बहुत, जो कि कल आया, पिछले कुछ सत्रों से आ रहा है विश्व के मार्केट्स में, वेस्टर्न मार्केट्स में, तो आप पा रहे हैं कि साउथ कोरिया में भी असर हो रहा है। वहाँ पे वायलेंटली इसलिए मूव कर रहे हैं और ज़्यादा शेल्बी से मूव कर रहे हैं क्योंकि उनके जो AI रिलेटेड प्लेज हैं, जो स्टॉक्स हैं, वहाँ पे असर ज़्यादा देख रहे हैं।
2: राइट And US President Donald Trump has delayed the planned 50% tariffs on Canadian imports worth $20 billion. The announcement came after the two countries reached a last-minute deal less than 2 hours before the sanctions were to go into effect. Canadian Prime Minister Mark Carney has said that the implementation of the tariffs has been postponed until the 21st of August. In a letter posted on social media posts, Mr. Carney said, over the last number of weeks, Canada has engaged in intensive discussions with the United States to address outstanding trade issues and deliver greater certainty and real benefits for Canadians. And continuing, the United Arab Emirates has suspended all trade, commercial exchanges and financial transactions with Iran until further notice, citing regional tensions and concerns over threats to regional and international security. UAE for

0: Ministry Communications Director Afra Al-Hameli said the decision is aimed at protecting regional stability and maintaining the integrity of the international financial system in accordance with international law and global standards. The announcement came after the UAE said its air defense systems detected two ballistic missiles launched from Iran towards the Gulf. However, Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakai categorically rejected the United Arab Emirates' claim that Iran had launched a missile towards that country, calling it harmful to regional trust and security efforts. Despite that, Tehran has warned that Strait of Hormuz will remain closed until a peace agreement is reached with the United States. And moving on to crude now. The global crude oil prices rose to a three-week high today as tensions in the West Asia intensified. Brent crude was trading 0.5% up at $91.49 per barrel in the intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% up at $85.50 per barrel when reports last came in.
1: उद्यम हम देख रहे हैं कि लगातार ये तीसरा सप्ताह है जब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ रहा है. ये सोचा गया था कि शायद इतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है. कोई था नजर नहीं आ रही. आपको क्या लगता है कि अब कैसी परिस्थितियां हमारे सामने और आने वाली हैं?
2: देखिए, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, क्योंकि 1/5 मतलब 20% जो तेल है विश्व का वो सप्लाई वहीं से निकलता है, और हमारे लिए हमारे देश के लिए अगर देखें वही इलाका है जो हमारे लिए सूट करता है, क्योंकि हमारे रिफाइनरीज हमारे पश्चिमी तटों में हैं, जो बड़े बड़े और आधुनिक रिफाइनरीज हैं, तो उनको वहाँ से सप्लाई अगर आपूर्ति मिलती है, वहाँ पे काम होता है और फिर उसको भारत में या दूसरे देशों में भेजा जाता है, वो चाहिए होता है. अब दिक्कत यह अगर आपूर्ति में प्रॉब्लम आएगी तो आप कहने को तो आप दुनिया के दूसरे कोने से तेल ला सकते हैं, पर एक तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन की जो लागत है, इंश्योरेंस, सब चीज़ों में असर पड़ जाता है. दूसरा है जो तेल वहाँ से आ रहा है उसका भी खर्चा बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें भी बीमा का खर्चा बढ़ रहा है. तो और दूसरी जगह से आप लाते हैं तो वक्त ज़्यादा लगता है, तो आपका जो पूरा सिस्टम था वो डिस्टर्ब हो जाता है. ऊपर से प्रेशर बढ़ता है, आपकी करेंसी पे प्रेशर बढ़ता है रुपए के ऊपर, तो चैलेंज तो बना रहेगा जब तक, क्योंकि हमें वो आयात करना ही है और वो आप रातों रात आप ऑयल डिस्कवरी तो होगा नहीं, तो ये ज़रूर चैलेंज बना रहेगा और हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ऊपर एक असर तो ज़रूर पड़ेगा शॉर्ट टर्म में.
1: आगे बढ़ते हैं. सोना 0.1% की मामूली गिरावट के साथ आज 1,53,868 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, और चांदी की बात करें तो 1.7% गिरकर 2,29,225 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. उद्यम जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद.
2: धन्यवाद.
0: Thank you so very much, Udyan, for having joined us. And before we close, a reminder of the headlines once again. So benchmark domestic indices decline. Sensex falls over 300 points. Nifty settles below 24,100. Any attempt to manipulate the newly introduced closing auction session will be dealt with sternly, says SEBI's chairman Tohin Kant Pandey. And global crude oil prices rise as tensions in West Asia intensify. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அஞ்சலி. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें चार रेलवे परियोजनाएं और एक राजमार्ग परियोजना शामिल है. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी.
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं. पहले चार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है. पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं. और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन. और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का. टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए.
1: वैष्णव ने बताया कि रेलवे की चार मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की चौथी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की चौथी लाइन, गुम्मिंडी पुंडी गुदूर की तीसरी और चौथी लाइन तथा कटक पारादीप की तीसरी और चौथी लाइन. इसमें भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के चौथे संस्करण में ये बात कही. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है. बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे.

0: निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य 24 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही अंतिम मतदाता सूची अब नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा, इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The Union Cabinet yesterday approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said, with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक, ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari yesterday said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the 4th edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements are strictly adhered to and that responsibility for quality and timely execution remains clearly with the principal contractor. US Ambassador to India Sergio Gaur yesterday described the Union Territory of Jammu and Kashmir as an important part of India and said the governments at the centre and in the region have taken significant steps to improve security in the Union Territory. The US envoy was talking to media after holding a meeting with Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah at his residence.

0: ஒழித்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இந்த இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சி. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அஞ்சலி. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें चार रेलवे परियोजनाएं और एक राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले चार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की चार मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की चौथी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की चौथी लाइन, गुमीडी पुंडी गुदुर की तीसरी और चौथी लाइन तथा कटक पारादीप की तीसरी और चौथी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के चौथे संस्करण में ये बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का काम 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जी

गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। नीदरलैंड्स के अम्सटलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ஒழித்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இந்த நினைவில் நின்றவை நிகழ்ச்சி. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே அஞ்சலி. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें चार रेलवे परियोजनाएं और एक राजमार्ग परियोजना शामिल है. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी.
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं. पहले चार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है. पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं. और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन. और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का. टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए.
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की चार मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की चौथी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की चौथी लाइन, गुमिडी पुंडी गुदूर की तीसरी और चौथी लाइन तथा कटक पारादीप की तीसरी और चौथी लाइन. इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं. बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. दोनों मंत्री मेक इन इंडिया ढांचे के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे. भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है. अमरीकी राजपूत ने कहा, केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की. अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया. बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा. सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है. चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा. बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है. ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी

0: दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन को ब्रिटेन के सैन्य समर्थन को लेकर चेतावनी दी है और कहा है कि रूसी क्षेत्र पर हमलों में ब्रिटिश मिसाइल बलों की सीधी भागीदारी युद्ध में सहभागिता के समान है। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2027 का शुभारंभ 17 अगस्त से 30 सितंबर तक चलने वाली विकसित भारत प्रश्नोत्तरी के साथ हो गया है। ये संवाद पूरे देश के युवाओं के लिए नेतृत्व, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की एक सुनियोजित और योग्यता पर आधारित यात्रा में भाग लेने का अवसर है। नीदरलैंड्स के आम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The Union Cabinet yesterday approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with a total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari yesterday said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise in the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the 4th edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements are strictly adhered to and that responsibility for quality and timely execution remains clearly with the principal contractor. U.S. Ambassador to India Sergio Gore yesterday described the Union Territory of Jammu and Kashmir as an important part of India and said the governments at the centre and in the region have taken significant steps to improve security in the Union Territory. The U.S. envoy was talking to media after holding a meeting with Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah at his residence in Srinagar. Chief Minister Omar Abdullah said the meeting focused on India-US relations in areas where the United States can engage with Jammu and Kashmir. Union Minister Kiran Rijiju has termed the claim as false that China has entered 60 kilometers into Arunachal Pradesh. In a social media post, Mr. Rijiju said that the photos and videos from Bangladesh were being used to falsely portray Chinese entry into Arunachal Pradesh. He said such claims could demoralize the army personnel guarding the border and create unnecessary confusion. The minister said the India-China border issue is a serious matter and appealed to people to not make false or unverified claims on such a sensitive issue. Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu has said the government aims to triple the country's air cargo volume by 2030. Mr. Naidu was speaking at the inauguration of new sectors under the Trans-Cargo Security Hold Area to enhance air cargo connectivity from Delhi Airport yesterday. The Directorate of Revenue Intelligence, DRI, has busted a wildlife trafficking syndicate involving in the illicit trade of ivory artifacts and seized 54 intricately carved ivory items in Lucknow. The seized items include animal figurines of bulls, elephants and

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुम्मीडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन, कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोनों मंत्री मेक इन इंडिया ढांचे के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने, रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। मिजोरम की न्यायिक अधिकारी हेलियन डांगलियानी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जज नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जज बनने वाली दूसरी मिजो महिला हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल की तराई क्षेत्रों और

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग ललित में सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे नीलाद्रि सेन। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तिमिर रॉय चौधरी।
1: இதுவரை பண்டிட் நீலாட்ரி சென் அவர்களின் சிதார் இசை கேட்டீர்கள். தொடர்வது சவிதா தேவி அவர்களின் தும்ரி.
2: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विदुषी सविता देवी का उपशास्त्रीय गायन। लीजिए सुनिए ठुमरी। बोल हैं सावन आए तुम नहीं आए।

अभी आप सुन रहे थे विदुषी सविता देवी से ठुमरी। आइए सुने एक और ठुमरी। बोल हैं सैया जुल्म करे, दैट वॉज ठुमरी। लिसन वन मोर ठुमरी बाई सविता देवी। बोल सैया जुल्म करे।

0: अभी आप सुन रहे थे विदुषी सविता देवी से ठुमरी। तबले पर संगत कर रहे थे उस्ताद हिदायत खान। सारंगी पर अनंत कुंटे और हारमोनियम पर थे अरविंद चाफलकर।
1: இதுவரை சவிதா தேவி அவர்களின் தும்ரி இசை கேட்டீர்கள். தொடர்வது ரசிக்லால் அந்தாரியா அவர்கள் பாட்டு.

मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमिंडी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक में द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोनों मंत्री मेक इन इंडिया ढांचे के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षीय गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। मिजोरम की न्यायिक अधिकारी हेलियन डांगलियानी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जज नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जज बनने वाली दूसरी मिजो महिला हैं। उनसे पहले जस्टिस मार्ली बैकुंग इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली मिजो महिला थी। हेलियन डांगलियानी फिलहाल आइजोल जिला अदालत में जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। इसके साथ ही नीदरलैंड्स के आम्स्टरडैम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल में 13,031 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री

0: सचिव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमुंडी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारदीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर रेल मार्ग की वृद्धि होगी। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इससे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय 24 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब इस महीने की 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर होगी। इन आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद 4 नवम्बर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। झारखंड में 26 दिनों से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें JPSC सिविल सर्विस और JSSC CGL भी शामिल है। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। सरकार के इस फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रभावित हुई है। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और अब खेल खबरें। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। उधर श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन पर सिमट गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में कुछ हिमालय के तराई क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देर रात बारिश हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with a total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: Five major decisions have been taken. The first 4 projects are related to the railways, while the 5th is the highway project. The first 4 railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradeep railway line. The 5th project is the construction of a 4-lane highway from Muzaffarpur.